चक्र चहन आचर चहन बरड रात रात रात जय हलो रूप रंग अचल मूरत अचल कलाकार सोच कहि इंद्र पवन मही पवन सूर्य

शरण कारण सागर आपे सयब रहयो भार पूर भार सगर काट रहयो काट रहयो व्यापत देवी आल।

काम खराब कर दी। निंदिया चुगल लोग जेड़े हन उन्होंने कर्म नू ऐसी गलबात की, कर्म सड़ गई कि साडे घर विच ऐश्वर्य नहीं, साडे शरीकां दे घर विच बहुत माया धन है। कर्मों ने आकर के बचन अपने पति पृथ्वी चंद

सतगुरु श्री गुरु अर्जन देव साहब पंजवें नानक जी कथन करते कहते निंदक लोकां ने कैसा काम किया कि मान लवो कि किसे सूरमे ने कटार अपने गात्रे पाई होवे शस्त्र पाया होवे ते कटार जदों घोड़े तो गिर जावे जां किसे कारण ही अपनी कटार ही अपने पेट दे विच जां शरीर उत्ते लग जावे ते शरीर दा नाश हो जांदा है। इसे तरह ही जेड़े

जी गुरु गरीब निवाज अंतर जामे सच्चे पातशाह जी महाराज आप जी दे पावन स्थान दी हाजरियां भरदे हुए गुरु क्रिया संगता वल्लों गुरबाणी दे शब्द कीर्तन सत्कार वजो बेअंत माया अरदास कराई पातशाह सतगुरु नाम आप जाने जानो कृपा करनी रहमत बख्शिश करनी देर उकता दे नाम दे

कर्ता करीम सोई राज करहिम ओई दूसरो न भेद कोई भूल भ्रम मान वो एक ही के सेव सब ही गुर देव एक एक ही स्वरूप सब एक ज्योत जान वो देहु राम सीत सोई पूजा निवाज ओई मान सब एक पयाने को भ्रमाव है देवता देव जज गंधर्व तुरक हिंदु न्यार न्यार देशन के भेद को प्रभाव है एक

धूर ते अनेक धूर पूरत है, धूर के कनु का फिर धूर ही समाहेंगे। जैसे एक नद दे तरंग कोड उपजत है, पान के तरंग सब पान ही कहाहेंगे। जैसे विश्व रूप ते अभूत भूत प्रकट हुए, ताही ते उपज सब ताही में समाहेंगे। केते कछ मछ केते उनको करत भच, केते अच वच हो सब पच उड़ जाहेंगे। केते नव बीज अच पच को करेंगे भच, के तक व्रत अच हो बचाए खाए जाहेंगे। जल कहाँ थल कहाँ, गगन के गौन कहाँ, काल के बनाए सब काल ही चबाहेंगे। तेज जीव तेज में अतेज, जैसे तेज लीन ताही ते उपज सब ताही में समाहेंगे। कुकद फिरत किते रोवत मरत, किते जल में डुबत किते आग में जरत है। किते गंग वासी किते मदीना मक्का निवासी, के तक उदासी के भ्रमाई फिरत है। करवत सहत किते भूम गड़त, किते सुआ पे चढ़त किते दुख को भरत है। ज्ञान में उड़त किते जल में रहत, किते ज्ञान के भीर जग जा रही मरत है। सोध हारे देवता विरोध हारे, दान बड बोध हारे, बोधक प्रबोध हारे, जापसी घास हारे, चंदन लगाए हारे, चुआचार पूज हारे, बाहन चढ़ाए हारे, लापसी गाह हारे, गोरन मनाए हारे, मटी मट लीप हारे, बीतन लगाए हारे, छापसी गाए हारे, गंधर्व बजाए हारे, किन्नर सब पच हारे, पंडित तपंत

रूपं न रेखं न मोहं न क्रोहं न द्रोहं न द्वैखं न कर्मं न भर्मं न जन्मं न जातं न मित्रं न सत्रं न पितरं न मातं न नेहं न गेहं न कामं न धामं न पुत्रं न मित्रं न सत्रं न भामं लेखं बेखं जोनि स्वरूपं सदा

अविनाशी परे अंगरा परम पूरण प्रकाशी न आदंग न व्यादंग गाधंग स्वरूप खंडत प्रतापाद अच्छे विभूते न जन्मंग न मरणंग न वर्णंग न व्याधे न अखंडे प्रचंडे अदंडे असाधे न नेहंग न गेहंग सनेहंग सनाथे उदंडे अमंडे प्रचंडे ब्रह्माथे न जाते न पाते न सत्रे न मित्रे स्वभूते भविखे भवाने अचित्रे नारायण नरंगं न रूपं न रेखं न लोभं न चोभंग भूतंग फेखं न सत्रंग न मित्रंग न नेहं न गेहं सदेवं सदा सर्व सर्वत्र सनेहं न कामं न क्रोधं न लोभं न मोहं जोनिय छयाद अद्वय अजोहं न जन्मं न मरणं न वर्णं न व्याधं न रोगं न शोकं भय निर्विखादं अछेदंग भेदंग कर्मंग कालंग खंडंग भंडंग प्रचंडंग पालंग न तातंग न मातंग न जातंग न कायं न नेहं न गेहं न भर्मं न भायं न रूपं न भूपं न कायं न कर्मं न त्रासं न प्रासं न भेदं न भर्मं सदेवं सदा सिद्ध

वेद के धर्म धामे कहूँ राज के साज के बाज धामे कहूँ अक्षर के वज्र के सिद्ध साधे कहूँ सिद्ध के बुद्ध के वृद्ध लादे कहूँ अंग के रंग के संग देखे कहूँ जंग के

गहु वरम प्रज्ञा गहु सर्वभूपं कहु नेह गृहं गहु देह दुखं गहु औषधि रोग के सुख सुखं गहु देव विद्या गहु दैत बाणी गहु जक्ष गंधर्व किन्नर कहानी कहु राजसी सातकी तामसी हो कहु जोग विद्या धरे तापसी हो कहु रोग रहता कहु जोग जुगतं कहु भूमि के भुगत मैं भरम भुगतं कहु देव कन्या कहु दानवी हो कहु जच विद्या धरे मानवी हो कहु राजसी हो कहु राज कन्या कहु श्रेष्ठ के पृष्ठ के रिष्ट पन्या कहु वेद विद्या कहु व्योम बानी कहु कोक की काव कथा कहानी कहु अद्र सारंग कहु भद्र रूपं कहु मद्र बानी कहु क्षुद्र स्वरूपं कहु वेद विद्या कहु काव रूपं कहु चेष्टाचार चित्रं स्वरूपं कहु परम पुराण को पार पावे कहु बैठ कुरान की गीत गावे कहु शुद्ध सेखं कहु ब्रह्म धर्मं कहु वृद्धावस्था कहु बाल कर्मं कहु ज्वाल स्वरूपं जरा रहत देहं कहु नेह देहं कहु त्याग गृहं कहु जोग भोगं कहु रोग रागं कहु रोग हर्ता कहु भोग त्यागं कहु राजसाजं कहु राजरीतं कहु पूर्ण प्रज्ञा कहु परम प्रीतं कहु आरबी तोर की पारसी हो कहु पहलवी पस्तवी संस्कृति हो कहु देश भाख्या कहु देव बानी कहु राज विद्या कहु राजधानी कहु मंत्र विद्या कहु तंत्र सारं कहु जंत्र रीतं कहु शस्त्र धारं कहु होम पूजा कहु देव अर्चा कहु पिंगला चारणी गीत चर्चा कहु बीन विद्या कहु गान गीतं कहु मलेज भाख्या कहु वेद रीतं कहु नृत्य विद्या कहु नाग बाने कहु गारुड़ गूढ़ कथा कहानी कहु अक्षरा पक्षरा मच्छरा हो कहु वीर विद्या भूतं प्रभा हो कहु छैल छाला धरे छत्र धारी कहु राज साजं थे राजाधिकारी

शत्रु मित्र नहीं जन्म जात जेह पुत्र भ्रात नहीं मित्र मात जेह करम वरम नहीं धर्म ध्यान जेह नेह गेह नहीं ब्योतबान जेह जात पात नहीं शत्रु मित्र जेह नेह गेह नहीं चिहन चित्र जेह रंग रूप नहीं राग रेख जेह जन्म जात नहीं भरम भेख जेह करम भरम नहीं जात पात नहीं नेह गेह नहीं पितृ मात जेह नाम थाम नहीं वर्ग ब्याज जेह रोग शोक नहीं सत्र साध जेह त्रास वास नहीं देह नास जेह आद अंत नहीं रूप रास जेह रोग शोक नहीं जोग जुगत जेह त्रास आस नहीं भूम भुगत जेह काल ब्याल कट्यो नांग अच्छा स्वरूप अखय अभंग जेह नेत नेत उचरंत वेद जेह अलख रूप कथत कतेव जेह अलख रूप आसन अडोल जेह अमित तेज अक्षय अतोल जेह ध्यान काज मुंजन अनंत कई कल्प जोग साधत दुरंत तन सीत घाम वर्खा सहंत कई कल्प एक आसन पितंत कई जतन जोग विद्या विचार साधंत तत् पावत न पार कई ऊर्ध पाह देशन भ्रमंत कई ऊर्ध मध्य पावक झुलंत कई सिमृत सासुरत उचरंत वेद कई गोग काव कथत कतेव कई अग्न होत कई पवन हार कई कर्त कोट मृत को आहार कई कर्त साग पै पत्र भच्छ नहीं तदप देव हो वत प्रत्यक्ष कई गीत गान गंधर्व रीत कई वेद शास्त्र विद्या प्रतीत कहूँ वेद रीत जग याद करम कहूँ अग्न होत्र कहूँ तीरथ धरम कई देश देश भाखार टंत कई देश देश विद्या बढ़ंत कई गर्त बांत भांतन विचार नहीं नायक तास पा यत्न पार कई कही तीरथ तीरथ भरम सो भरम कई अग्न होत्र कई देव

कहूं हस्त दान कहूं अश्वमेध मख को बखान कहूं करत ब्रह्म विद्या विचार कहूं जोग रीत कहूं बिरद चार कहूं करत जच्छ गंधर्व गान कहूं धूप दीप कहूं अर्घ दान कहूं पितृ कर्म कहूं वेद रीत कहूं नृत्य नाच कहूं गान गीत कहूं करत शास्त्र सिमृत उचार गई भजत एक पग निराधार कई नेह देह गई गेह वास गई ब्रह्मत देश देशन उदास गई जल निवास गई अगन ताप गई जपत उर्द लटकंत जाप कई जपत जो कल प्रंग प्रजांत नहीं तदपतास पाय न अंत कई करत कूट विद्या विचार नहीं तदप दृष्ट देखे मुरार बिन भगत सगत नहीं परत पान बहु करत हो मर जग दान बिन एक नाम एक चित लीन फो कटोस।

अनखंड अमंड प्रचंड नरंग देह रचयंग देव देव वरंग सब की नीतीन जमीन जमाजे रचयंग सर्व मकीन मकां जे राग न रूप न रेख रुखं जे ताप न साप न सुख सुखं जे रोग न शोक न भोग भुयं जे खेद न भेद न छेद छयं जे जात न पात न मात पितं जे रचयंग छत्री छत्र चितं जे राग न रेख न रोग फणं जे द्वैख न दाग न दोख गणं जय अंड ते ब्रह्मंड रचियो दस चार करी नव खंड सचियो रज तामस तेज तेज कियो अनुभव पत आप प्रचंड लियो श्रेय सिंध रो बिंद न गिंद नगं श्रेय जच गंधर्व वणिंद भुजंग रच देव देव भेव नरंग नर पाल रिपाल कराल त्रिगं कई कीट पतंग भुजंग नरंग रज अंड सेत जोत भुजंग किए देव देव सराद पितंग अनखंड प्रताप प्रचंड गतंग प्रभ जात न पात न ज्योत जुतंग जय दात न मात न भ्रात सुतंग जय रोग न शोक न भोग भुअंग जय जंप है किन्नर जच जुअंग नर नार नपुंसक जाह किए गण किन्नर जच भुजंग दिए गज बाज रथादिक पांद गणंग भवभूत भवेख भवान तुअंग जय अंडज सेतज जेर रजंग रज भूम आकाश पताल जलंग रज पावक पौन प्रचंड बलि बन जास कियो फल फूल कली भुव मेरा आकाश निवास चितंग रज रोज एकादश चंद्र वृतंग तुत चंद दिनी सह दीप दई जय पावक पौन प्रचंड मई जय खंड अखंड प्रचंड किए जय छत्र उपाय छपाय दिए जय लोक चतुर्दश चार रचे नर गंधर्व देव देव सच्चे अंधूत भूत छूत मतंगन गाद प्याद नाद गतंगन खेद भेद छेद नरंग जय चार चतुर्दश चक्र फिरंग जय राग न रंग न रेख रुगं जय शोक न भोग न जुग जुगं भुव भंजन गंजन आदि सरंग जय बंदत देव देव नरंग गण किन्नर जाछ भुजंग रचे मण माणक मोती लाल सुचे अन भंज प्रभा अन गंज प्रतंग जय पार न पावत पूर मतंग अनखंड स्वरूपा दंड प्रभा जय जंपद वेद पुराण सभा जय वेद कतेव अनंत कहे जय भूत अभूत न भेद लहै जय वेद पुराण कतीब जपय सत सिंध दो मुखताप जपय कई कल्पन लो तप ताप करय नई नय कृपा निध पान परय जय फोकट धर्म सभय तज है एक चित्त कृपा निध को जप है ते या भव सागर को दर है भव भूल न देह पुनर्धर है एक नाम बिना नहीं कोट प्रतीम वेद उचार सार सुती जो वारस के जस के रस है देव।

नाथ है, समस्त सिद्ध वृद्ध दास दीव सर्वसात है। अनाथ नाथ नाथ है, अभंज भंज है सदा, गंज गंज गंज है सदीव सिद्ध वृद्धदा। अनूप रूप स्वरूप है, छिज तेज मानी है, सदीव सिद्ध शुद्धता प्रताप पत्र जानी है। नराग रंग रूप है, रोग राग रेख है, अधोग ताक दग है, अभूत ब्रह्म भेक है। न तात माद जात है, न पाद चिहन वरण है, अदेघ शेख भेक है, सदीव विश्ववरण है। विश्वंबर विश्वनाथ है, विशेक विश्ववरण है, जिमी जमान के भी सदीव करम भरम है। अद्वैख है, अभेक है, अलेख नाथ जानी है, सदीव सर्व ठौर में विशेक आनंद मानी है। न जंत्र में, न तंत्र में, न मंत्र बस आवई, पुराण यो कुरान नेत नेत कह बतावई। न कर्म में, न धर्म में, न भरम में बताइए, अगंज आदि देव है कहो सो कैसे पाइये। जिमी जमान के बिखे समस्त एक ज्योत है, न घाट है, न बाढ़ है, न घाट बाढ़ होत है। नहान है, न बान है, समान रूप जानी है, मकीन मकान अप्रमाण तेज मानी है। न देह है, न गेह है, न जात है, न पात है, न मंत्र है, न मित्र है, न तात है।

है न रंग है न मान है न मौत है न साख है न संग है न जज है न गंधर्व है न नर है न नार है न चोर है न साव है न साह को कुमार है न ने है न गे है न देह को बनाओ है न चल है न छिद्र है न छल को मिलाओ है न जंत्र है न मंत्र है न तंत्र को स्वरूप है न राग है न रंग है न रेख है न रूप है न जंत्र है न मंत्र है न तंत्र को बनाओ है न छल है न छिद्र है न छाया को मिलाओ है न राग है न रंग है न रूप है न रेख है न कर्म है न धर्म है या जन्म है या भेद है न दात है न माद है या ख्याल खंड रूप है या छेद है या भेद है न रंग है न भूप है परे है पवित्र है पुनीत है पुराण है अगंज है अभंज है करीम है कुरान है अकाल है अपाल है ख्याल है अखंड है न रोग है न सुख है न भेद है न भंड है न अंग है न रंग है न संग है न साध है प्रया है पवित्र है पुनीत है प्रमात है न सीत है न सोच है न ग्राम है न घाम है न लोभ है न मोह है न क्रोध है न काम है न देव है न दैत है न नर को स्वरूप है न छल है न छिद्र है न छिद्र के विभूत है न काम है न क्रोध है न लोभ है न मोह है न द्वैख है न भेख है न दुई है न द्रोह है न काल है न बाल है सदीव दयाल रूप है अगंज है अभंज है अभरम है अभूत है अछेद छेद है सदा गंज गंज गंज है अभूत भेक है बलि अरूप राग रंग है न द्वैख है न भेख है न काम क्रोध कर्म है न जात है न पात है न चित्र चिहन वर्ण है बेअंत है अनंत तेज जानी है भूम विज है सदा छिंच तेज मन्य है न आद है न व्याद है अगाध रूप लिखी है दुख है अदाग है छह प्रताप लिखी है न कर्म है न भरम है न धर्म को प्रभाव है न जंत्र है न तंत्र है न मंत्र को रलाव है न छल है न छिद्र को स्वरूप है अभंग है अनंग है अगंज सी विभूत है न काम है न क्रोध है न लोभ मोहकार है न आद है न गाद है न व्याद को विचार है न रंग राग रूप है न रूप रेख रार है न हाव है न भाव है न दाव को प्रकार है गजाधपि नराधपि गरंत सेव है सदा सिद्धस्पति तपस्पति वनस्पति जपस सदा अगस्त आद जे बड़े तपस्तपे विशेखी है बेअंत बेअंत बेअंत को करंत पाठ भिखी है अगाध आद देव की अनाद बात मानी है न जात बात मंत्र मित्र शत्रु सने जानी है सदैव सर्वलोक के कृपा।

रूप राग ना रेख रंग न जन्म मरण विहीन आदनाद गाद पुरख सो धर्म करम प्रवीण जंत्र मंत्र न तंत्र जाको आद पुरग अपार हस्त कीट बिखे वसे सब ठौर मैं निर्धार जात पात न तात जाको मंत्र मात न मित्र सर्व ठौर बिखे रमयो जय चक्र चिहन न चित्र।

सनक आसन केस नंदन पावही ना सेब जाच किन्नर मछ मानस मुर्ग उर्ग पार नेत नेत पुकार ही शिव सकर ओम उचार सर्व सबद पतार के दर्जा पही जह जाप आद देवा गात तेजा नाद मुरत अताप जंत्र मंत्र न आवई कर तंत्र मंत्र न कीन सर्व ठौर रहियो विराज धीराज राज प्रवीन जछ कंदरब देव दानो न ब्रह्म क्षत्रिय न माहे वैसनंक बिखे विराज सूत्र भी वह नाहे गुड़ गौड़ न भील भी कर ब्रह्म शेख स्वरूप रात दिवस न बध उर्ध न भूमा काश अनूप जात जन्म न काल करम न धर्म करम विहीन तीर्थ जातरण देव पूजा गौर के न अधीन सर्व सपत बतार के तर जानिए जह जोत शेष नाम सहंस वर्ण नेत पूर्ण होत सोद सोद हटे सभ सुर विरोध दानव सरब गाय गाय हटे गंधर्व गवाए किन्नर गरब पड़त पड़त थके महाकब गढ़त गाड़ अनंत हार हार कहे सभु मिल नाम नाम दुरंत बेद भेद न पायो लखेओ न सेवक तेब देव दानो मूढ़ मान

सर्वखंडन सर्वदंडन सर्वके निजभाम सर्वभुक्ता सर्वजुक्ता सर्वकर्म प्रवीण सर्वखंडन सर्वदंडन सर्वकर्म अधीन सर्वसिमृतन सर्वशास्त्रन सर्ववेद विचार दुष्टहर्ता विश्वहर्ता आदरूप अपार दुष्ट दंडन पुष्ट खंडन आदि देव खंड भूम का जले थले वह जपत जाप मंड श्रेष्ठ चार विचार जेते जानिए सब चार आदि देव पार श्री पद दुष्ट पुष्ट प्रहार अन्नदाता ज्ञान ज्ञाता सर्व मान महेंद्र वेद व्यास करे कई दिन कोट इंद्र उपेंद्र जन्म जाता कर्म ज्ञान

केसरी प्रवाहे सुदसन्ना हे अगमथाहे एक वृते जय जय हो से माखा सुर मर्दन आद कुमार गाध वृते सुर नर मन बंदन दुष्ट निकंदन वृष्ट विनाशन अमृत मथे कावरु कुमारे अधम धारे नरक निवारे आद कथे किंकणी प्रसोहन सुर नर मोहन सिंहारोहण पितल तले जय जय हो से सब ठौर निवासन पाए पताला का सनले संकटी निवारण धम उधारण तेज प्रकर खंड तुंद तवे दुह दुख दहंती ज्वाल जयंती आद अनाद गाद अच्छे शुद्धता समर्पण तर्क वितर्कण तपत प्रतापण जपत जिवे जय जय हो सी सहस्र प्रकर खंड आद नील गाद भे चंचला चखंगी अलग भुजंगी तुंद तुरंगण तिच्छ सरे कर कसा कुठारे नरक निवारे अधम उधारे तूर भुजे दामनी दमंके के हर लंके याद अतंके क्रूर कथे जय जय हो सी रक्ता सुर खंडन शुंभ चक्र तन शुंभ मथे बारज बिलोचन तन विमोचन सोच विसोचन कौज कसे दामनी प्रहासे सुख सरणासे सुख

सुन बाजे ब्रह्म भाजे सुनत सुरंग कोकिल सुन लाजे किल बिक भाजे सुखूप राजे मध उरंग दुर्जन दल दझे मंदन रिझे सब न फजे रूह रणंग जय जय हो सीम खा सुर मर्दन चंड चक्रदन आद गुरंग चाचरी प्रजोदन दुष्ट विरोधन रोष अरोधन क्रूर प्रत्ये धूमराज विध्वंसन प्रलय प्रजुन संजग विध्वंसन शुद्ध मते जाल पाजयंती शत्रु मथंती दुष्ट प्रदाहन गाढ़ मते जय जय हो सी मय खासुर मर्दन आद जुगाद अगाद गते खत्रियाण खतंगी अभय अभंगी आद अनंगी अगाद गते ब्रिड लाज विहंडन चक्षुर दंडन तेज

दामनी प्रकाश अंतरना से ज्योत प्रकाश अतुल बले दान वी प्रकर खण सरवर वर खण दुष्ट प्रदर खण बितल तले अष्टायद बाहन बोलने बाहन संत बनाहन गूढ़ गते जय जय हो सी मैखा सुर मर्दन आद नाद गाद प्रते दुख दुख प्रवचन सेवक रक्षण संत प्रतक्षण शुद्ध सरे सारं सन्ना हे दुष्ट प्रदा हे अर्दल गाहे दुख हरे गंजन गुमाने अतुल प्रवाने संत जमाने आद अंते जय जय हो सी मैखा सुर मर्दन साध प्रतक्षण दुष्ट हंते कारण करीली गर्भ कहीली ज्योत जतीली तुंद मते अष्टायद चमकण शस्त्र जमकण दामिन दमकण आदते डुकडुके दमंगे बाघ बबंगे बुजा फरंगे शुद्ध गते जय जय हो सी मैखा सुर मर्दन आद जुगाद अनाद मते चछरा सुर मारण नरक निवारण पति दुधारण एक भटे पापान बिहंडन दुर्ज प्रचंडन खंडे अखंड

रक्ता सुर मर्दन चंड चक्र दंदान वर्धन बिड़ाल बदे सरदार अभिवरखण दुर्जन धरखण दुल नमरखण धरम दुजे धूमराज विधुन संसरुणत चुन संसुंब न पात न सुंब मथे जय जय होसी मैं खा सुर मर्दन आद नील गाद कथे।

अत्र के चलैया चित छत्र के धरैया छत्र धारियो के छलैया महासत्रन के साल है दान के दिवैया महामान के बढ़ैया वसान के दिवैया है कटैया जम जाल है युद्ध के जितैया विरुद्ध के मिटैया महाबुद्ध के दिवैया महामान हूँ के मान है ज्ञान हूँ के ज्ञाता महाबुद्धता के दाता देव काल हूँ के काल महाकाल हूँ के काल है पूर्वी न पार पावे हिंगुला हिमालय धैव गौर कर तेजी गुण गावे तेरे नाम है जोगी जोग साध पौन साधना की तेग बांधे अरब के अरबी अराध तेरे नाम है फराके फिरंगी माने कंधारी गुरे से जाने पछम के पछमी पछान निज काम है मरटा मंगे दे तेरी मान सो तपस्या करे देड़ वह तिलंगी पहचान धर्म धाम है बंग के बंगाली फिर हंग के फिर अंगा वाली दिल्ली के दिल वाली तेरी आज्ञा में चलत है रोह के रोहेले माग देश के मुकेले वीर बंग सी बुदेले बाब पुंज को मलत है वो खागुन गावे चीन मचीन के शीस ने आवे तिबती ध्याय दुख देह के तलत है जिन्हें तोह ध्यायो तिन्हें पूरण प्रताप पायो सर्व धन धाम फल फूल।

संफलत है। देव देवतान को सुरेश दानवान को महेश गंग धान को अभेश कहियत है। रंग में रंगीन राग रूप में प्रवीण और काहु पे नदीन साध दीन कहियत है। पाइये न पार तेज पुंज में अपार सर्व विद्या के उदार है अपार कहियत है। हाथी की पुकार पल पाछे पहुँचत ताहे चिट्ठी की निंगार पहले ही सुनियत है। कहते इंद्र द्वार कहते ब्रह्मा मुख चार कहते कृष्णा अवतार कहते राम कहियत है। कहते ससरासी कहते सूरज प्रकाशी कहते मुंडिया उदासी जोग द्वार दहियत है। कहते महादीन कहते ब्यास से प्रवीण कहते कुमेर कुलीन कहते जश कहियत है। दत है विचार बन पूर्ण को पावे पार ताहि ते अपार निराधार लहियत है। पूरन अवतार निराधार है न पारावार पाइये न पार पे अपार के बखानिये। अद्व अविनाशी परम पूरन प्रकाशी महारूप हूँ कर राशि है अनासी के मानिए। जंत्र हूँ न जात जा की बाप हूँ न मायता की पूर्ण प्रभा के सो छटा के अन मानिए। तेज हूँ को तंत्र है के राजसी को जंत्र है के मोहनी को मंत्र है निजंत्र के जानिए। तेज हूँ कतर है राजसी कुसार है शुद्धता को घर है सिद्धता की सार है। कामना की खान है साधना की शान है विरक्तता की बान है बुद्ध को उदार है। सुंदर स्वरूप है भूपन को भूप है रूप हूँ रूप है कुमत को प्रहार है। दीनन को दास है गनीमन को गारक है साधन को रचक है गुणन को उपहार है। सिद्ध को स्वरूप है के बुद्ध को विभूत है के क्रुद्ध को अभूत है के अच्छे अविनाशी है। काम को कुनिंदा है के खूबी को दिहंदा है गनी मन गनिंदा है के तेज को प्रकाशी है। काल हूं के काल है के सत्रण के साल है के मित्रण को भोगत है के वृद्धता की बासी है। योग हूं को जंत्र है के तेज हूं को तंत्र है के मोहनी को मंत्र है नि के पूर्ण प्रकाशी है। रूप को निवास है के बुद्ध को प्रकाश है के सिद्धता को बास है के बुद्ध हूँ को घर है। देवन को देव है निरंजन अभेव है अदेवन को देव है के शुद्धता को सर है। जान को बचैया है मान को दिवैया है जमजाल को कटैया है के कामना को कर है। तेज को प्रचंड है अखंडन को खंड है महीपन को मंड है के स्त्री है नर है। विश्व को भरण है के आपदा को हरण है के सुख को करण है के तेज को प्रकाश है। पाइये न पार पारावार हूँ को पार जगो की जत विचार सो विचार को निवास है। हिंगुला हिमालय का वह बसी है लपित है वह पूर्वी न पार पावे असते अनाश है। देवन को देव महादेव हूँ के देव है निरंजन अभेव नाथ वह अविनाशी है। अंजन विहीन है निरंजन प्रवीण है के सेवक अधीन है कटैया जम जाल के। देवन के देव महादेव हूँ के देवनाथ भूम के भुजैया है मुहैया महाबाल के। राजन के राजा महासाज हूँ के साजा महाजोग हूँ को जोग है धरैया द्रोमचाल के। कामना के कर है के बुद्धता को हर है के सिद्धता के साथी है के काल है कुचाल के। छीर कैसी छीरावत छाद के छी सतरा नेर छपा कर कैसी छप काल इंद्र के कूल के। हंसनी से सिहारो महीरा सिंह सेनाबाद गंगा कैसी धार चली सातो सिंध रूल के। पारसी पलाऊ गढ़ रूपा कैसी रामपुर सोरासी सुरंगाबाद नीके रही झूल के। चंपासी चंदेरी गुड़ चांदनी सी चांदागढ़ कीरत तिहारी रही मालती सी फूल के। फटक सी गलास कमाऊ गढ़ कांसीपुर सीसा सी सुरंगाबाद नी के सोहियत है। हिमासी हिमालय हर हार सी हलबा ने रहस कैसी हाजीपुर देखे मोहियत है। चंदन सी चंपावती चंद्रमा सी चंद्रगीर चांदनी सी चंदगढ़ जोन जोहियत है। गंगा सम गंग धार बकांसी बुलंदवाद कीरत तिहारी की ओजियारी सोहियत है। फरासी फिरंगी फरासी के दुरंगी मकरान के मृदंगी तेरे गीत गायत है। भकरी गंधारी गोर कखरी गुरदे जचारी बावन के आहारी तेरो नाम ध्यायत है। पूरब पलाऊ काम रूप कमाऊ सर्प ठौर में विराज जहां जहां जाइयत है। पूर्ण प्रताप यंत्र मंत्र तेता विनाथ की

0: सतगुरु महाराज जी दे नाल वचन कीता सी, वादा कीता सी कि मैं तुहाडे दुखियां नूं जिन्हां ने गुरु घर दे नाल पाप कमाया उन्हां नूं फड के आप जी दे हवाले कर दवांगा। इस तरह अपने मंत्रियां नूं सारा वचन दस्या है।
1: ये कार्य बन आवे कैसे,
0: ये कार्य किस तरह होवे कि किस तरीके दे नाल आपां गुरु जी नूं खुश करिए, कि कोई कारण होवे कि आपां सारे गुरु जी दे जिन्हें ने पाप कमाया दोषियां ने जिन्हां ने गुरु घर दे नाल वादा कीता उन्हां नूं गुरु जी नूं फड़ा दईए, किस तरह ये काम सारा बन सकदा तुसी सारे मैनू दसना करो।
1: अबलो तेज न पहामम ऐसे,
0: कि ऐसा कोई कारण होवे कि नवा नवा राज प्राप्त होया है अजे राज पूरे तरीके नाल कायम नहीं होया, अजे ता मैं हुणे तख्त दे उत्ते बैठे हां, किस तरीके दे नाल कोई विधि होवे जिस दे नाल मेरा राज ना हिले, राज दे तेज नू किसे प्रकार दा कोई नुकसान ना होवे।
1: एक सूबा जिस काल,
0: जिस समय जेकर मैं एक सूबे नू किसे एक सूबे नू फड़ के गिरफ्तार करके गुरु जी नू पकड़ाउंदा हां,
1: रह रौर सल्तन चल चाल,
0: फिर मेरी सल्तनत दे विच राज दे विच बगावत उठेगी, बगावत करके राज सांभिया नहीं जाएगा, इस करके किसे भी सूबे नू किसे मंत्री नू किसे मुलाने नू हुण फड़ना वाजिब नहीं, सही नहीं है।
1: गर जाएंगे लश्कर पहारे,
0: सतगुरु महाराज जी दे नाल भी फौजां हन अते सूबियां दे नाल भी बड़े लश्कर हन बड़ियां फौजां हन, जिन जे एक सूबे नू फड़दे आ उहदे नाल दे होर सूबे भी साडे खिलाफ हो जाणगे, साडे राज विच बिगड़ पै जाएगा, राज विच विद्रोह उठ जावेगा।
1: बेइतबार बनह नर सारे,
0: सारे लोग बेइतबार करनगे, कोई साडे दी गल दे उत्ते इतबार नहीं करेगा, कोई साडी गल नू मन्नेगा नहीं, इस तरह राज दे विच बहुत सारा रोला उपद्रव मच जाएगा।
1: जब सूबे बिगड़े लर परे,
0: जे कर किते सूबे साडे नाल बिगड़ जांदे हन, 22 सूबे सन हिंदुस्तान दे राज दे विच, जेकर सूबे मेरे खिलाफ हो जाते हैं साडे नाल जंग करते हैं,
1: सब देशन रौरा बिस्तरे,
0: एक सूबे तो रोला बद्दा बद्दा सारे देश विच ए रोला ए बिगड़ा पै जावेगा, ते जेड़ा विद्रोह साडे वस विच नहीं होवेगा, एक बारी रोला बद गया फिर लड़ाई साडे हाथ विच नहीं आउणी।
1: गुरु संग कही यह कैसे,
0: इस तरह बादशाह दे मंत्रियां ने बादशाह बहादुर शाह नूं विचार दसी कि कोई इस तरह गुरु जी नूं आपां इस तरीके दे नाल बचन करिए, इस तरह उन्हां नूं आखिए,
1: जिस दे रस है ना रह रस ऐसे,
0: कि ऐसे प्यार दे नाल गुरु जी दे नाल बचन करिए कि साडा गुरु जी दे नाल भी विगाड़ ना पवे ते साडे राज दे विच भी उपद्रव ना उठे, गुरु जी दे नाल भी प्रेम रह जावे सूबियां दे नाल भी प्रेम रह जावे।
1: जब अस चिंता सहत बखाना,
0: जदों बादशाह बहादुर शाह दे मंत्रियां ने बादशाह बहादुर शाह नूं इस तरह

फिर बादशाह बहादुर शाह ने अपने दूतां नूं भेज करके सतगुरु गुरु कलगीधर पातशाह महाराज जी नूं अपने पास बुलाया है, सद्दा भेजिया है। सतगुरु पातशाह जी अपने घोड़े दे उत्ते सवार हो करके जिथे बादशाह बहादुर शाह दा तंबू लगा सी उस पासे नूं चल पए हन। सतगुरु पातशाह जी बहादुर शाह दे कोल पहुंचे। बहादुर शाह ने बड़ी निम्रता दे नाल सतगुरु जी नूं नमस्कार कीते। सतगुरु जी नूं बड़े सन्मान दे नाल आदर दे नाल अपने पास बिठाया है। हाथ जोड़ करके सतगुरु सच्चे पातशाह

0: आप जी का सवाल पूरा कर देवांगा। आप जी कृपा करो, एक साल वास्ते आप जी महाराज रुकना करो।
1: बनो ना बेमुख संग तिहारे।
0: महाराज जी मैं आप जी तो बेमुख नहीं हां, मैं आप जी दे नाल प्रेम नाल महाराज आप जी तो डर के आप जी दी भै भावनी विच रवांगा।
1: मैं जानो नी के उपकारे।
0: मैं आप जी दे उपकारां नू जानदा हां, जो आप जी ने मेरे उत्ते उपकार कीता मेनू हिंदुस्तान दे राज भाग बख्शे हन।
1: सुन श्री मुख साहिब फरमायो।
0: सतगुरु सच्चे पातशाह महाराज पै काहू को देत नहि नहि पै मानत आन। हिंदुस्तान दा बादशाह सी बहादुर शाह, सतगुरु जी नू वादा कीता ते वादे तो मुकर रहा सी। हुण सतगुरु सच्चे पातशाह महाराज उस समय निरपै हो करके इस तरह वचन कीता।
1: अब ते पाज कहन मन पायो।
0: हे बादशाह बहादुर शाह, जेड़ा तू वादा कीता सी तू उस तो मुकर रहा, तू हुण झूठ बोल रहा, तेरा पाज जेड़ा झूठ है वो सामने आ रहा है।
1: इसी हेत हम लिखत कराई।
0: इसे करके ही सानू पता सी तुसी मुकर जाना, इस करके असी तेरे तो राज देन तो पहला तेरे तो लिखत कराई सी। लिखत विच लिया सी कि साडे ए जो इकरार है पूरा करेगा। हुण तू अपने इकरार तो बदल रहा है, पलट रहा है।
1: संतन पाए सो नट कर जाई।
0: सानू पहला ही पता सी कि तू इनू राज मिल गया तू बदल जाएगा, इस करके असी तेरे तो पक्की लिखत करवाई सी।
1: फरेब लिखे पर की ना।
0: पर फिर भी तुसी फरेब करते हो, झूठ बोलते हो, अपनी गल्लां तो पैर पिछे करते हो। इस करके असी तेनू जेड़ा जेड़ा तू साडे नाल इकरार कीता सी ओथो तू पिछे पलट रहा है। तेनू असी एक सवाल पाया सी, असी तेनू इन्ना वड्डा राज भाग पूरे हिंदुस्तान देश दा दित्ता सी, पर तू एक इकरार नहीं पूरा कीता, एक इकरार तो पिछे मुकर रहा है। असी तां तुरकां दीआं जड़ां उखाड़ दित्तियां सी इस देश विचों। असी तां जिस समय सतगुरु सच्चे पातशाह जी ने राय कले दे पास महाराज बैठे सन, सतगुरां ने घाही दा बुट्टा पुट के आख्या सी तुरक राज की जड़ां उखाड़ी। असी तुरकां दे राज दीआं जड़ां उखाड़ दित्तियां। सतगुरु कहिंदे असी तां तुरकां दा राज पहलां ही खत्म कर चुके सी। तू साडे कोल आया दीन हो के, गरीब बन के साडी शरण विच आया, ते शरण विच आया दी गुरु घर लाज पात रखदा। जो शरण आवे तिस कंठ लगावे, ए बिरद स्वामी संदा जेड़ा गुरु दी शरण विच आउंदा उसनू गुरु अपनी छाती नाल लाउंदा। इस तरह तू साडी शरण विच आया सी, इस करके असी तेनू राज दे दिता से। पर तू फिर भी विश्वास घाती निकलिया है, तू अपने कीते हुए इकरार तो कीते हुए पूरे सवाल तो तू मुकर गया है।
1: दियो ना दैबे कहियो जरूरा।
0: असी तेनू जो तेरे नाल इकरार कीता सी अपना इकरार पूरा कीता, पर तू जो इकरार साडे नाल कीता, जो साडे नाल तेरी गलबात होई सी, लिखत गलबात होई सी, तू ओथों मुकर गया, हुण झूठ बद बोल रहा है। ए तो बड़ियाई देनी सी असी तेनू कि जिन्हां पापियां ने इस संसार उत्ते गऊ गरीब दे नाल पाप कमाया, इस देश दे हजारां लोकां दे धर्म बदले, इस देश दे हजारां मंदरां नू तोड़िया, इस देश दी जो मर्यादा सी उसनू खत्म कीता, असी तां उन्हां नू पकड़ा के तेरे कोलों फड़वाणा सी, उन्हां नू सजावां देणियां सी। इहदा तेनू असी बादशाही दे रहे सी, तेनू वडियाई दे रहे सी, पर तू वड्याई लैण दे काबल नहीं है। असी ये चंगा काम तेरे कोलों करवाना चाहते सी कि बादशाह औरंगजेब ने तां पाप कीते, उहदे पुत्तर ने चंगे काम कीते, ऐसा असी संसार नू दसना चाहते सी,
1: ਤੋ ਭਾਗ ਵਿਖੈ ਇਹ ਨਾਹੀ,
0: ਤੇਰੇ ਭਾਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕੰਮ ਇਹ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਇਹ ਨਹੀਂ ਲਿਖੇ ਹੋਏ।
1: ਦੇਖ ਆਪਣੇ ਚਿੱਤ ਸਹੀ,
0: ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਜਾਂਚ ਕਰ, ਇਸ ਨੂੰ ਦੇਖ।
1: ਐਸੋ ਸਿੱਖ ਬਣਾਵਾ,
0: ਹੁਣ ਮੈਂ ਐਸਾ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਗੁਰੂ ਕਾ ਲਾਲ ਤਿਆਰ ਕਰਾਂਗਾ, ਐਸੀ ਫੌਜ ਤਿਆਰ ਕਰਾਂਗਾ।
1: ਜਗ ਮਹਿ ਦੇ ਕਰ ਤੇਜ ਵਧਾਵਾ,
0: ਉਸ ਨੂੰ ਐਸਾ ਤੇਜ ਪ੍ਰਤਾਪ ਬਖਸ਼ਾਂਗਾ, ਐਸੇ ਉਸ ਨੂੰ ਮੈਂ ਐਸੀ ਕਲਾ ਆਪਣੇ ਹੱਥੀ

0: जिस दा नाम उतरैण है, दूजे भाग ऐण दा सूरज दे दो भागां विच सूरज चलदा साध संगत जी, जिस नूं जिहड़ा कि हाड़ तों शुरू हो करके जनवरी दे तक, जनवरी पोह दे महीने तक चलदा, ते दूजा जिहड़ा पोह तों लै के हाड़ तक चलदा है। इस तरीके दे नाल इस ग्रंथ की दूजी ऐण आरंभ करते हैं। अकाल पुरख वाहेगुरु एक, ओ अंकार एक है, दो नहीं है, तीन नहीं है। संसार दे लोक वखरे वखरे नाम लैंदे तां सोचदे कि वाहेगुरु कई होणगे, पर गुरु नानक देव साहब सतगुरु सच्चे पातशाह जी ने जो सिद्धांत दिता एक ओ अंकार, परमेश्वर वाहेगुरु एक है। ओ अंकार कैसा उसका स्वरूप है, वह सब नूं पैदा करन वाला है, सब नूं जन्म देन वाला है, सब दी पालना करता है, सब नूं रोजी रोटी देंदा है, अते सब दा संघार करता है। सत गुर प्रसाद, सत जो सदा ही सच्चा है, जो कदी नाश नहीं हुंदा, चेतन जो सब दे विच जिस दी चेतना चलती है, वह परमेश्वर वाहिगुरु जो सब दे विच रमिया होया, सारियां दे विच वरतदा है। प्रसाद आनंद स्वरूप है परमेश्वर वाहेगुरु, उस दे विच कोई भी दोख रोग सब को काल, सबन को करता रोग सोग दोखन को हरता, रोगां सोगां दा नाश करन वाला आनंद स्वरूप ओ परमेश्वर वाहेगुरु है।
1: श्री वाहेगुरु जी की फतेह।
0: सतगुरु श्री वाहेगुरु जी की फतेह, यह मंगल कलगीधर पातशाह जी ने उच्चारण किया। जिस समय सतगुरु जी ने पहली जंग जीती, खालसे ने आख्या महाराज आप जी की फतेह हुई, सतगुरु सच्चे पातशाह कहंदे मोह को दास तमन का जानो, या मैं भेद ना रंच पछानो, मैं हूं परम पुरख को दासा, देखन आयो जगत मासा, मैं ता अकाल पुरख दा दास हां, वाहेगुरु दा दास हां, वाहेगुरु का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह, श्री वाहेगुरु जी की फतेह। उस परमेश्वर वाहेगुरु की हर थां, हर समय, हर काल, हर स्थान उते फतेह है, उसकी जित है।
1: उत्तर ऐन प्रारंभते,
0: हुण उतरैण जो सूरज दी उतरैण हुंदा है, इसे तरह ही इस ग्रंथ नूं दूजे भाग विच उतरैण दा ग्रंथ भाग जो है उस नूं आरंभ करदे हन।
1: जगरानी मानी सुरन सुखदानी निज दास,
0: जो कवि जान हन, कविता दे लिखारी हन, ओ साध संगत जी सरस्वती दी पूजा कर दे, जो सरस्वती है ओ मुख दी बाणी दी मर्यादा दा मंगल जान के, उस नूं जो सरस्वती है ओ बाणी दी देवता मन्नी जांदी, बाणी दी दात देण वाली है, विद्या देण वाली है, उसका मंगल करद्या होया कवि जी कहंदे जग रानी जगत दी राणी मानी सुरन, जिसनू देवते मनते हन, देवते जिसकी पूजा करते, सुखदानी निज दास, ते सदाई अपने दासां नूं सुख देण वाली है।
1: पूरन किनस ग्रंथ को कब रसना पर बास,
0: कवि जी कहंदे जिसने साडी रसना दे उत्ते बास करके कलगी धर पातशाह जी दी आग्या अनुसार यह ग्रंथ असी पूर्ण कर रहे हां, ग्रंथ लिख रहे हां।
1: श्री नानक अंगद गुरु अमरदास पद बंद,
0: हुण दस पातशाहियां दा मंगल कर रहे इत्थे कवि जी, श्री नानक धन सतगुरु श्री गुरु नानक देव साहब सतगुरु सच्चे पातशाह, श्री गुरु अंगद देव महाराज जी अमरदास पद बंद, तिना सतगुरु सच्चे पातशाह गुरु अमरदास महाराज जी दे चरणा उत्ते साडी नमस्कार है।
1: रामदास अर्जन गुरु बर श्री हर गोबिंद,
0: धन सतगुरु श्री गुरु रामदास साहिब महाराज जी, धन सतगुरु श्री गुरु अर्जन देव महाराज, बार श्री हर गोबिंद श्रेष्ठ सतगुरु श्री गुरु हर गोबिंद

जय गुरु गुरु निवास अंतर जामी सच्चे पातशाह जी महाराज धन धन श्री गुरु गोविंद सिंह जी महाराज आप जी दे पावन पवित्र स्थान तक सचखंड दरबार दी यहां दरिया बरदे होए कीर्तन दे सत्कार जो संताल बिनत माया हाजिर हो जिस खजाने विच माया हाजिर कीति सो सुग जाने भरपूर करना नाम दान गुर सिखी वाला जीवन वसना दे अरुप प्रभुक सुनियासा मसा संपन्न करनी यात्रा सफली करनी शब्द प्यारियो।

साहिब सत्तों चंडियां साहिबां जी दे सुख दे दर्शन दीदार मेले बोलो जी। बिबार साहिब जी, पंजे साहिब जी, कपाल मोचन जी, रण मोचन जी, नानक मत्ते जी, तिलगंजी जी, नानक झीरा जी, शिकार घाट जी, हीरा घाट जी, माता साहिब देवां जी, संगत साहिब जी।

नानक दुपा किस्मा ले सब नाम दिन करते करना किया चिंता पे करने दा सो करता चिंता करे जिन पाया जग तिस ज्वारी स्वास तिस तिस दी बाण अपग।

पौड़ी दुर्क्रम जिना को तुझ पैता तेने कसम दिया आया। इना जनता के कितने तुझे की जगत पाया। इकना नू तू मेले का पोत खुवाया। गुर कृपा ते जाने

जुग जुग बैर उठाए ज्ञानी बुझता है। सतगुरु संतो का धर्म के रतवा उतरे जते का जोर के रतवा द्वापर तपे का सत के रतवा

0: तन फिटे फेड़ करेन मन झूठी चुली भरेन
1: मत पिटे बे मत पिटे एहो अनसाडा पिटे तन फिटे फेड़ करेन मन झूठे चुली।